वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: एतस्मिन् सप्ताहे वयं कानिचन सुभाषितानि श्रुतवन्तः, काश्चन कथाः अपि श्रुतवन्तः, पञ्चतन्त्रविषये ज्ञातवन्तः, एवं शनैः शनैः संस्कृतभाषा ज्ञानेन सह संस्कृतवाङ्मय परिचयः अपि भवत् अस्ति। इस सप्ताह में हमने कुछ सुभाषित सुने, उनका अर्थ देखा, कुछ कथाएं सुनी, पंचतंत्र नाम के ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय सुना। इस प्रकार संस्कृत भाषा के संस्कृत वाङ्मय का परिचय धीरे धीरे हो रहा है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत वाङ्मय का भी परिचय धीरे धीरे हो रहा है। आज हम संस्कृत भाषा में एक धातु से बहुत सारे भिन्न अर्थ वाले क्रियापद कैसे बनते हैं वो देखेंगे। अद्य विषयः अस्ति उपसर्गाः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। उपसर्गेण धात्वर्थः बलाद् अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। उपसर्ग के कारण एक ही धातु से भिन्न अर्थ वाले क्रियापद बनते हैं, जैसे कि प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि शब्दों में इन शब्दों में क्रियापद है। जैसे कि प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार आदि शब्दों में धातु है रु। रु याने हरति, यथा चोरह धनम हरति, मतलब है चोर धन चुराता है। हरति के पहले प्र, आ, सम, वी, परी ऐसे प्रत्यय लगते हैं तो नए क्रियापद बनते हैं। इन प्रत्ययों को उपसर्ग कहते हैं। उदाहरणम अस्ति, धातु अस्ति रु हरति, हरति के पीछे प्र लगाया तो होता है प्रहरति, मतलब है प्रहार करता है। आहरति, आहार लेता है। संहरति, संहार करता है। विहरति, विहार करता है। परिहरति, परिहार करता है। व्यवहरति, व्यवहार करता है। कुछ वाक्य देखेंगे तो अर्थबोध हो जाएगा। चोरह धनम हरति, वृद्धह उद्याने विहरति, भीमह गदया प्रहरति, दुष्टह पशून संहरति, पिता समस्याम परिहरति, मम पुत्रह आंग्लभाषया व्यवहरति, माता एकादश्याम निराहरति, याने उपवासम करोति। ज्ञातम खलु उपसर्गेण धातोः अर्थः कथं परिवर्तते इति। अन्यम एकं धातुं स्वीकुर्मः। गम याने गच्छति, जाता है। बालकः दशवादने विद्यालयं गच्छति। बालकः सायंकाले पञ्चवादने गृहं आगच्छति। तो यहाँ क्या हुआ, गच्छति, आगच्छति, अर्थ बिल्कुल उल्टा। रामः वनं गच्छति, राम वन जाते हैं या राम वन को जाता है। लक्ष्मणः रामं अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे जाता है ना, आदर से हम बोलेंगे राम वन जाते हैं, लक्ष्मण राम के पीछे जाते हैं। पिता दूरदर्शनम दृष्ट्वा समाचारम अवगच्छति, क्या हुआ मतलब अवगच्छति, पिता दूरदर्शन देख के समाचार समझते हैं। तो गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति, प्रत्यागच्छति, उपगच्छति, अनुगच्छति, ऐसे बहुत सारे क्रियापद केवल एक धातु गम से बन गए। है ना मजे की बात। संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक शब्द बनाने की क्षमता है, वे सब व्याकरण के नियमों के अनुसार ही बनते हैं। यह संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य है। एतद् एव संस्कृतेन वदामि, शृण्वन्तु। रोचकम् अस्ति खलु संस्कृतभाषायां नूतन शब्दानां निर्माणस्य महती शक्तिः वर्तते। नूतन शब्दान् निर्मातुं व्याकरण नियमाः सन्ति। एतत् संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम्। एकवारं उपसर्गकारिकां वदामः। अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। उपसर्गेण धात्वर्थः बलाद् अन्यत्र नीयते। प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत्। परह्यः वयम् एकां कथां श्रुतवन्तः। कथायां व्याधः आसीत्, भल्लूकः आसीत्, व्याघ्रः अपि आसीत्। कथायाः अन्ते एकं सुभाषितम् आसीत्। स्मरन्ति किम्? न स्मरन्ति? तर्हि अहं स्मारयामि, अहं स्मारयामि, याद दिलाति हूँ। उपकारिषु यः साधुः, साधुत्वे तस्य को गुणः, अपकारिषु यः साधुः, स साधु सद्भिः उच्यते। तरी सह साधु सद्भिः उच्यते। यहाँ इस सुभाषित में उपकार और अपकार दो शब्द आते हैं। उनका धातु है कृ, कृ यानी करोति, यथा बालकः स्नानं करोति। करोति तो आपके पहचान वाला क्रियापद है। उपकरोति का मतलब है उपकार करना, अपकरोति का मतलब है अपकार करना, अहित करना। हाँ, आप ठीक समझे। उप और अप उपसर्ग है। प्रश्न अस्ति, उत्तरम अवश्यं प्रेषयन्तु। करोति, उपकरोति, अपकरोति इत्यादिषु क्रियापदेषु धातुः कः? उत्तरम अवश्यं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। अद्य भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसंख्या 141 50 पर्यन्तम्। ओम श्री परमात्मने नमः।
1: ओम श्री परमात्मने नमः।
0: व्यवसायात्मिका बुद्धिः।
1: व्यवसायात्मिका बुद्धिः।
0: एकेह कुरु नंदन।
1: एकेह कुरु नंदन।
0: बहुशाखायनन्ताश्च।
1: बहुशाखायनन्ताश्च।
0: बुद्धयो व्यवसायिनां।
1: बुद्धयो व्यवसायिनां।
0: यामि मां पुष्पितां वाचम्।
1: यामि मां पुष्पितां वाचम्।
0: प्रवदन्त्य विपश्चितः।
1: प्रवदन्त्य विपश्चितः।

0: प्रदाम
1: जन्म कर्म फल प्रदाम
0: क्रिया विशेष बहुलाम
1: क्रिया विशेष बहुलाम
0: भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया पहृत चेतसाम
1: व्यवसायात्मिका बुद्धिः
0: व्यवसाय

0: निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः
1: निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः
0: निर्योगक्षेम आत्मवान्
1: निर्योगक्षेम आत्मवान्
0: यावानर्थ उदपाने
1: यावानर्थ उदपाने
0: सर्वतः संप्लुतोदके
1: सर्वतः संप्लुतोदके।

0: ते संगोस्त्व कर्मणि
1: योगस्थ कुरु कर्माणि
0: योगस्थ कुरु कर्माणि
1: संगम त्यक्त्वा धनंजय
0: संगम त्यक्त्वा धनंजय
1: सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा
0: सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा
1: समत्वं योग उच्यते
0: समत्वं योग उच्यते
1: दूरेण यवरं कर्म
0: दूरेण यवरं कर्म
1: बुद्धियोगाद्धनंजय
0: बुद्धौ शरणमन्विच्छ
1: कृपणाफलहेतवः
0: बुद्धियुक्तो जहातीह
1: उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अद्यतन श्लोक पठनं समाप्तम्। इदानीं शांति मंत्रान् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली म्हणून धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिंग आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: शीघ्रता का महत्व. सुबह सुबह लंबे सफर पर निकलना हो, गाड़ी पकड़ना हो, तो आलस करने से काम नहीं चलेगा. उसके लिए अलबेलापन छोड़ शीघ्रता से उठना पड़ेगा, नहीं तो पल भर की देरी से गाड़ी छूट जाएगी. ऐसे ही जिंदगी के सफर में अनेकों अवसर अचानक दस्तक देते हैं, लेकिन उनका लाभ लेने में शीघ्रता नहीं दिखाई तो पछताना पड़ता है. सहजता से लाभ दिलाने वाला एक अनमोल गुण है शीघ्रता. शीघ्रता अर्थात किसी भी कार्य को तुरंत कर देना, पल भर या सेकंड की देर न करते काम को फुर्ती से करना, समय न गवाते हुए चुस्ती और उमंग उत्साह के साथ कार्य में लग जाना भी शीघ्रता ही है. व्यक्तित्व विकास में दुर्गुण किसी भयानक रोग के समान होते हैं, जो विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं. उन्हें निकालने में थोड़ा भी विलंब हुआ तो वो अमर बेल की तरह फैलने लगते हैं. अतः व्यक्तित्व विकास के लिए कमियों, खामियों व दुर्गुणों को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करना आवश्यक है. जहाँ स्वपरिवर्तन की जरूरत हो वहाँ परिवर्तन में चाहिए शीघ्रता, क्योंकि मानव मन अति चंचल है. पल पल में मन के विचार बदलते रहते हैं. व्यवहार में बदलाव लाने के लिए विचार बदलने से पहले ही शीघ्रता से शुभ संकल्प पर अमल करना बेहद जरूरी है. दान का संकल्प आते ही शीघ्रता से दान दे देना चाहिए, नहीं तो मन की चंचलता से दान करने का विचार धीरे धीरे मंद पड़ने लगता है और पुण्य कर्म से व्यक्ति वंचित हो जाता है. पढ़ाई में दिए गए गृह पाठ को शीघ्रता से पूर्ण करने से ही परीक्षा में उत्तम परिणाम भी मिलते हैं. लेकिन इसके विपरीत कार्य करने में देरी करने से कार्य अधूरा रह जाता है और सफलता हाथ से निकल जाती है. ब्रह्मा कुमारी इसकी प्रथम प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हमेशा कहती थी, अपने में बदलाव लाना हो तो स्व परिवर्तन में इतनी शीघ्रता हो कि एक भूल दोबारा हो ना सके. अतः शीघ्रता को अपनाइए और आए अवसर का पूरा पूरा लाभ लीजिए और जीवन यात्रा को सफलता से आगे बढ़ाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं है.
2: क्या भैया, दिवा लागला की.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसूबे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय

0: होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध

0: से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट ए एफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिव सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in French capital.
4: 90.4 FM वेणुधुनी के LE कंसू पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के LE कंसू।
5: के ಕೆಎಲ್ಇ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾವಿ. 2026-27 ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಬಸವನ್ ಕುರ್ಚಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಬಿಫಾರ್ಮ್, ಫಾರ್ಮ್ ಡಿ, ಎಂ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 100+ ವರ್ಷಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 3,000+ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದ ಹೊಸ ಆವರಣ, ಔಟ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ನ್ಯಾಕ್ A+ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು NIRF ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08312471399, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9740639702, ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.kleefarm.edu.
6: ಕೆಎಲ್ಇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಯೇತೆ. ಜನ್ಮಲೇಲ್ಯಾ ಮುಲಾಂಪಾಸೂನ್ ತೆ ವಯೋವೃದ್ಧಾಂಪರ್ಯಂತ ದಾತಾಂಚಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಜ್ಯಾಮಧ್ಯೆ ದಾತಾಂಚಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ, ದಾತ ಕಾಢಣೆ ಆಣಿ ಬಸವಣೆ, ವಾಕಡೆ ದಾತ ಸರಳ ರೇಷೆತ ಕರಣೆ, ಚಿರಲೇಲೆ ಓಟ, ಅಪಘಾತಾಮುಳೆ ಡೋಕಂ, ಮಾನ, ಚೆಹರಾ ಆಣಿ ತೊಂಡಾಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೋಳೆ, ನಾಕ ಆಣಿ ಕಾಣ ಯಾಂಚಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ತೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರೋಗಾವರ್ತಿ ಉಪಚಾರ, ತಸೇಚ ದಾತಾಂಚಾ ಪಿವಳೆಪಣಾ ದೂರ ಕರಣೆ ಆಣಿ ಬರೇಚ ಕಾಹಿ. ಯಾ ಸರ್ವ ಸುವಿಧಾಂಚಾ ಲಾಭ ಘೇಣ್ಯಾಸಾಠಿ ಭೇಟ ದ್ಯಾ ಕೆಎಲ್ಇ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕತ್ತಿ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೆಎಲ್ಇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಆಮಚಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 08312470362 ಆಣಿ 9448998331.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स लेकर आई हूं मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, पिछले संडे जैसे हम हर संडे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, मैंने भी वही किया। हम सारे दोस्त मिलने वाले थे डिनर के लिए, और एक्चुअली हम शाम को मिलने वाले थे 6-7 बजे, ताकि हम

0: अब बेलगाम में ट्रैफिक। जी हाँ दोस्तों, बेलगाम में ट्रैफिक।
1: बातें करेंगे इसी विषय पर कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

0: और ये मंत्री जी ने कलाई के प्रयोग से धन को मोड़ दिया है। बाउंड्री लाइन की तरफ यहाँ कोई फील्डर नहीं और जनता के देखते ही देखते स्विस बैंक में एक और खाता खुला।
1: पर हमरे घोटाले से तोहरा घोटाला बड़ा कैसा रे?
2: जी हाँ, सुपर घोटाले की चमकार ज्यादा सफेद।

अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सब शहर में रहने वाले लोगों की कहानी है, क्योंकि आजकल हर एक घर में कम से कम एक गाड़ी तो है ही है, और एक से ज्यादा भी गाड़ियां हो सकती है। और ये सारी गाड़ियां वीकेंड्स पे, संडेस पे, छुट्टियों के दिनों में बाहर निकलती है, घूमने जाती है। गाड़ियां नहीं, गाड़ियों में बैठ के हम घूमने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, दोस्तों को मिलने निकलते हैं, डिनर के लिए, शॉपिंग के लिए, हर एक चीज के लिए हमें गाड़ी चाहिए। एक जमाना था जब हम बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में ट्रैफिक की बातें सुनते थे। वहाँ रहने वाले हमारे रिश्तेदार हमेशा हमें बताते थे कि वहाँ पे कितनी भीड़ है, कितनी ट्रैफिक है, कितना समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए। और हम कॉलर टाइट करके कहते थे कि हमारी सिटी बेलगाम सिटी तो बस 15 मिनट्स की सिटी है, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचने के लिए 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। पर अब ये गलत साबित हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक के पास अब गाड़ी हो गई है। अब ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है ये एक ही समस्या नहीं है, इसके साथ साथ जितने जितने व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं उतने उसके साथ बहुत सारी और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और इन समस्याओं से, इस ट्रैफिक से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ प्यारे गाने सुन लेते हैं। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

जितनी गाड़ियां बढ़ रही है उतना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, उतना नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में फेंका जा रहा है और उतना ही ओजोन लेयर भी डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ रहा है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है। समझे आप, बिना वजह बिना जरूरत के जब गाड़ी लेकर आप घर से बाहर निकलते हो यूं ही चक्कर मारने, टहलने, मन हल्का करने, तब कभी आपने सोचा था कि आपके इस चक्कर में इस धरती का, हमारे समाज का, हमारे पूरी दुनिया का कितना नुकसान हो रहा है? अगली बार जरूर सोचना। गाड़ियों के साथ साथ कचरा भी बढ़ता जा रहा है और ऐसा कचरा जो रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है। गाड़ियां दिन ब दिन मजबूत बनती जा रही है, फैंसी बनती जा रही है, बुलेट प्रूफ, विंड प्रूफ और पता नहीं क्या क्या प्रूफ बनती जा रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल इस्तेमाल होते हैं जो केमिकल से बने हुए होते हैं, तो उसका जो कचरा होता है उससे केमिकल निकलता है और ऑफ कोर्स वो हमारी मिट्टी को और हमारे पानी को प्रदूषित करता है। और वो कचरा जो निकलता है वो ऐसा होता है जो लंबे समय तक डिकम्पोज नहीं हो सकता, यानी ये जो गार्बेज है दिस इक्वल्स टू प्लास्टिक, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों को ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ियों को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और इतनी सारी ड्यूरेबल और सुरक्षित गाड़ियां जब रस्तों पे उतरती है तब सोचो कितना पोल्यूशन फैलता है, कितना कचरा फैलता है। जब ये गाड़ियां यूज करने लायक नहीं होती तब उनका क्या होता है और उसकी वजह से हमारे ऊपर, हमारे धरती के ऊपर उसका क्या असर होता है, इसके बारे में भी सोचना। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि, मैं RJ स्वरा कुछ ही गानों के बाद लौट कर आऊंगी। आप बने रहिए हमारे साथ, बी रिलैक्स पर।

टूट रहा है अब विश्वास, 5 वर्ष धुंधला आकाश, कौन द्वार हम खटकाएं, कौन से वादे दोहराएं।

जो गाड़ियाँ बढ़ रही है बहुत सारी एनर्जी भी कंज्यूम कर रही है। अब आप कहोगे कि एनर्जी कैसे कंज्यूम कर रही है, ये गाड़ियाँ चलती है पेट्रोल पर, डीजल पर, सोलार एनर्जी पर और इलेक्ट्रिसिटी पर। ये सारी एनर्जी, ये सारे फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों को चलाने में, इन फ्यूल से हम बहुत सारी जरूरत की चीजें बना सकते हैं। पर इस फ्यूल को इस्तेमाल करके हम सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और सोचो, ट्रैफिक में जब हम फंसे हुए होते हैं तब कितनी देर तक हम इंजन ऑन रखते हैं और कितना सारा पोल्यूशन फैलाते हैं, कितना सारा पेट्रोल वेस्ट करते हैं। इन्हीं सब फ्यूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी जरूरत की चीजें बनाई जा सकती है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो ये भी बढ़ती गाड़ियों का एक गलत असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। सही डायरेक्शन में हम प्रोग्रेस करना चाहते अगर है तो हम किन चीजों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। बातें जारी रहेंगी, गाने भी हमें सुनने को मिलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं शो में और सुनते हैं कुछ प्यारे गाने। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

क्या आपको पता है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन का इस्तेमाल इन गाड़ियों को पार्क करने में या गाड़ियों को खड़ी रखने में किया जा रहा है। अब इतनी बड़ी जगह सिर्फ गाड़ियों को रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इस जमीन के ऊपर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम एजुकेशन के लिए इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रहने के लिए जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए नहीं तो हम पर्यावरण के लिए भी इस जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट मिलेगा बहुत सारी अलग अलग एनिमल और बर्ड स्पीशीज को। पर हम इसका इस्तेमाल अपनी गाड़ी खड़ी रखने के लिए करते हैं। जब हम अपने घर के खिड़की से बाहर अपनी गाड़ी को खड़े हुए देखते हैं ना, तो हमें प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाकर ये गाड़ी खरीदी है। जब हम इस गाड़ी में अपनी फैमिली को लेकर निकलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम हमारी फैमिली को ये कंफर्ट दे पा रहे हैं। पर कभी इस गाड़ी को देखकर आपको ये लगा कि इस गाड़ी की वजह से इस समाज को, इस दुनिया को, इस देश को कितना सारा नुकसान हो रहा है? अगर ये नुकसान आप कम करना चाहते हैं तो आपको क्या कदम उठाने हैं, मैं आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। Be relaxed with RJ Swara।

है दोस्तों, बहुत सारी सीरियस बातें हो गई और मैंने आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील करा दिया। अब समय आ चुका है कि हम अपनी गलती सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सुबह उठ के योगा क्लास जाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, किसी दूर के गार्डन में वॉक करने जाते हैं और गाड़ियां लेकर निकलते हैं। आप वॉक करने गाड़ी लेकर जाते हो? आप कसरत करने जिम जाने के लिए आप गाड़ी का या स्कूटर का इस्तेमाल करते हो? आपको ये गलत नहीं लगता? अगर आपको एक्सरसाइज ही करनी है तो अपने घर के आसपास कीजिए, अपने घर के पास वाले पार्क में चले जाइए, अपने घर से नजदीक जो जिम है वहाँ की मेंबरशिप ले लीजिए और चलते हुए जाइए। चलते नहीं जाना है तो साइकिल ले लीजिए, साइकिल से जाइए, जिससे ज्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं होती, जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, जो पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं फैलाता और आपका समय भी बचाता है। तो एक साइकिल खरीद लीजिए। छोटी छोटी जो जर्नीज होती है हमारे घर से, समझो आप गए कॉर्नर की शॉप तक दूध लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, ग्रोसरीज लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, ये जो छोटे छोटे हमारे चक्कर कटते हैं ना दिन में 4-5 बार, अरे ये रह गया ये लाना है, अरे वो मेहमान आ गए फटाक से ये लेके आओ, ये जो हमारा चलता है ना, ये सब हम बाइसिकल पे कर सकते हैं। इससे हमारा समय भी बचेगा, काम भी फटाफट हो जाएगा, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, पोल्यूशन भी कम होगा और हमारे बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। तो सबसे पहले हमें काम करना है ये कि जहाँ हम चल के जा सकते हैं वहाँ पे हमें चल के जाना चाहिए, और जो थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे है, जहाँ समय बचाने की जरूरत है, वहाँ पे जब तक हो सके हमें साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM बी रिलैक्स में। इसी विषय पर बहुत सारी और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ गानों के बाद।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। अब आपके फैमिली में है 2 लोग 3 लोग या 4 लोग, 4 लोगों के लिए आप एक गाड़ी लेकर निकलते हैं। हर एक फैमिली एक एक गाड़ी लेकर रास्ते पर निकलेगी तो कितना सारा फ्यूल इस्तेमाल होगा और कितना सारा पोल्यूशन बनेगा। वही 4 फैमिलीज अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 4 अलग अलग गाड़ियों की जगह एक बस में फ्यूल इस्तेमाल होगा और एक बस से पोल्यूशन बनेगा। तो सोचो इन दोनों में कितना फर्क है। इसकी वजह से आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, पोल्यूशन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। तो जहां हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके पैसे भी बचे, आपकी सेहत भी बनी रहे और हमारे समाज का भी थोड़ा भला हो। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। वी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

कार पुलिंग एक बहुत अच्छी आइडिया है और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तो ये सबसे बेस्ट है। एक ही एरिया में रहने वाले एक ही स्कूल के बच्चे बारी बारी कार पुलिंग करके स्कूल जा सकते हैं। समझो एक एरिया में एक स्कूल के 5 बच्चे रहते हैं, वो 5 बच्चे 5 अलग अलग गाड़ियों में स्कूल जाते हो, उसकी जगह बारी बारी हर एक घर से एक पेरेंट अपनी गाड़ी लेकर सभी 5 बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने जाए, तो रोजाना की 5 गाड़ियों का इस्तेमाल की जगह रोजाना की एक गाड़ी इस्तेमाल होगी, एक गाड़ी से पोल्यूशन होगा, एक गाड़ी का पेट्रोल इस्तेमाल होगा, समय तो उतना ही लगता है। उल्टा बाकी के 4 पेरेंट्स जिनके बच्चे दूसरे पेरेंट के गाड़ी में जा रहे हैं उनका समय बच जाएगा। तो कार पुलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। मैंने तो सिर्फ स्कूल के बच्चों का एग्जाम्पल दिया, ऑफिस के एम्प्लॉयज का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कॉलेजेस के बच्चों का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कार पुलिंग बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। जब कार पुलिंग करोगे तो उतना ही फ्यूल, टाइम, एनर्जी बचेगी, पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं। और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है पर समय थोड़ा सा कम है, इसलिए फटाफट थोड़े से गाने सुनकर तुरंत लौट कर आइए। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

अब हमें हम जो गाड़ियां चालू रखते हैं ना सिग्नल पर या रास्ते की साइड पर रोककर आप गाड़ी चालू रख के कुछ लेने के लिए निकल गए या फिर रुककर किसी के साथ बात कर रहे हैं पर आपकी गाड़ी का इंजन शुरू है तो ये आपको नहीं करना है। जब आप गाड़ी रोकते हैं उसी के साथ आपको चाबी घुमाकर अपनी गाड़ी बंद करनी है। इससे पेट्रोल बचेगा, आपके पैसे बचेंगे, पोल्यूशन कम होगा, छोटा सा फर्क पड़ता है पर छोटा छोटा मिलाकर एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा फर्क हम इस समाज में ला सकते हैं। और एक चीज हम कर सकते हैं, जब भी हम घर के लिए या किसी चीज के लिए शॉपिंग करने के लिए निकले तब एक अच्छी सी लिस्ट बना ले, जिस एरिया में हम जा रहे हैं उस एरिया में जो जो चीजें मिलती है एक ही साथ में एक ही ट्रिप में वो सारी चीजें याद करके खरीद कर लाए, ताकि आपको बार बार उस जगह ना जाना पड़े। आपका टाइम बच जाएगा, आपकी मेहनत बचेगी, पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, पेट्रोल के समय भी बचेगा और व्हीकल्स का इस्तेमाल कम होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और जब भी अगली बार आप चाबी लेकर बाहर निकले तो एक बार सोच लीजिएगा कि सच में मुझे व्हीकल इस्तेमाल करने की जरूरत है या कोई और उपाय है मेरे पास। समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए आखिरी के कुछ प्यारे गाने आपको सुना रही हूँ। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

दोस्तों, ये था आज का शो। व्हीकल्स बहुत बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ रहा है। उन प्रॉब्लम्स से हम कैसे बचे, इसके बारे में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे और उपाय होंगे जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9019904904। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए और अगली बार चाबी लेकर बाहर निकलने से पहले सोचना जरूर कि सच में आपको अपना व्हीकल, अपना वाहन इस्तेमाल करने की जरूरत है या नहीं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

ये करते वो करते, कहानियाँ सुनते, ये खाते ये खेलते, और ये जो ख्वाहिशें हैं ये हमेशा ही हमारे मन में आती रहती है। सुनते हैं हम भी अगर बच्चे होते तो क्या क्या करते। दूर की आवाज़ इस फिल्म का अगला गाना, जिसके बोल है हम भी अगर बच्चे होते, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले और मन्ना डे ने। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी और सायरा बानो ने काम किया था। इनके साथ साथ जॉनी वॉकर, प्राण और दुर्गा खोटे ने भी इस फिल्म में काम किया था। सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसूर।

बचपन के बाद आती है जवानी, और ये जवानी जब आती है तब हमें अकेलेपन का एहसास दिलाती है। हमारा मन एक साथी की खोज में परेशान होने लगता है। हर एक इंसान को एक साथी की, एक हमराही की, एक हमराज की जरूरत होती है। अगला गाना है जोशे जवानी, जोशे जवानी हाय रे हाय। अराउंड द वर्ल्ड इस फिल्म का ये गाना है जो 1967 में रिलीज हुई थी। इस गाने को राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया है। म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है शैलेंद्र जी ने, गाया है मुकेश जी ने। सुनते हैं ये जोशे जवानी क्या कहती है

जिंदगी के सफर में हम जब जवान होते हैं, हमें एक साथी की तलाश होती है और उस साथी को ढूंढते ढूंढते हम भी अपने आप को तैयार करने लगते हैं। फिर शुरू होती है अपने आप को प्रूव करने की शरियत। लड़का और लड़की दोनों के ही अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए खुद को बेहतर बनाने की कोशिश होती है और यही कोशिश अगले गाने में हमको सुनने को मिलती है। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, कारवा फिल्म का ये गाना है जो 1971 में रिलीज हुई थी। ये गाना जितेंद्र और अरुणा ईरानी के ऊपर फिल्माया गया है, जिसे गाया है मोहम्मद रफी साहब ने और लता मंगेशकर ने। सुनिए ये खूबसूरत सा गाना और अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धोनी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा।

है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: यादों की

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पुणे 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE करने सुबह आप ट्यून है यादों के बारात, हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।